0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

दुनिया की ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है. द वॉइस ऑफ जुनेद जमशेद. जुनेद बिगैन हिज करियर एज अ पॉप आर्टिस्ट हु रोज टू फेम इन द 1980s, एंड इन 2004 जुनेद जमशेद फॉर्मली

Taslim, adab, assalamu alaikum, wa rahmatullah, wa barakatuh, and a very good evening to Kavali lovers out in Lotus Land. Yes, you have been listening to Maryam Bibi Khan, and of course, I'm sure every one of you are spiritually enriched after tuning in to the Niyat, and of course, our guest as well. Shukran to him for coming through and highlighting his issue. Jazakallah, my brother, you go well as well. कवाली नगमों का ये प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। मैं आपका मेहसबान हूँ और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं। जी हाँ, खाकसार को इबी महमूद कहते हैं। तो लीजिए, प्रोग्राम का आगाज नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं।

करबला वालों के बाजू में है ताकत, यह बिल्कुल आसिफ मालिक साहब की आवाज थी। नात रसूल गुनगुना रहे थे माशाल्लाह, लिसनिंग टू अस ऑफ कोर्स आर सो मेनी ऑफ यू। अब्दुल मुनाफ साहब बोत्सवाना के रहने वाले हैं, पाकिजा निजामी ऑफ बेव्यू, यासीन लतीफ और मेहन फ्रॉम पीटरमैरिट्सबर्ग, नदीर खान साहब चैट्सविथ के रहने वाले यूनिट 9, मजीद एंड कुरेशा कादर एंड फैमिली ऑल द वे फ्रॉम लनेशा एक्स डेमन नाइस। यस, एंड आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, नजफ की तरफ चलते हैं और हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम के बेकस पनाह में चलते हैं और वहां तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं सूफी ब्रादरान। एंड लिसनिंग टू अस दिस इवनिंग इज द मेंबर्स ऑफ बापा। यस, बापा बज़्म में आशिक पंजतन अशरफी, जनाब साबिर नसीरा शेख अशरफी, ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट पार्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। साथ में वी हैव सुकैना द नाइटिंगेल, ज़हरा, Fiza and baby Zainab all listening through, and all the rest of you, khas aap log ke liye Hazrat Ali Karamullah Wajal Kareem ki bekas panah mein.

कौन कौन लोग यहां से अजमेर गए, अजमेर शरीफ। कसम खुदा की आज की डेट में मैं अजमेर शरीफ होता लेकिन ये प्रोग्राम बुक था मेरा यहाँ का, तो यहाँ आना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे गरीब नवाज का उर्स बड़े ही धूमधाम से इस वक्त चल रहा है और पूरी दुनिया में मनाया जा

कुछ भी उतारा करके शुक्रिया मेरे भाई। ये राशिद भाई की जानिब से 100 रुपए मिले हैं और ये बहुत सारी हौसला अफजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।